चाहिदा ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा मिल जुगा सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना जो स्टडी वीजा स्किल्ड वीजा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा डामा पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490054596 गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ आओ थोड़ा कोई हल करिए।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: जी तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
3: बहुत लंबे समय तो औरतां दी सेहत नूं गंभीरता नाल नहीं लिया गया है। हुण बेहतर करन दा समां है। बेहतर सहायता, वधेरे स्पष्ट जानकारी अते वधेरे आसानी नाल उपलब्ध देखभाल। एंडोमेट्रियोसिस विच सहायता, IUD लगवाउण समय मुफ्त दर्द राहत अते मेनोपॉज दौरान सहायता। असी बेहतर हो रहे हां तां जो तुसी भी बेहतर हो सको। womenshealth.wic.gov.au ते जाके होर जानो। विक्टोरियन सरकार मेलबर्न द्वारा जारी।
4: सोना चाहिदा,
5: भरोसा चाहिदा,
4: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493536042।
6: रोज रोज शॉपिंग हुंदिया ने, पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्हां ने।
7: सूरज देवता
6: की मतलब?
7: ओ कमलिए, सन करंट वालियां तो जद्दा इन्हां ने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई।
6: मैनू नहीं पता, आपा भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे।
7: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल। कॉल सन करंट 0448-066-494 ते। सालां तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम, सन करंट। देओ रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी।
3: क्या आप जानते हैं कि बच्चों की उम्र 5 साल की होने से पहले उनका दिमाग लगभग 90% विकसित हो जाता है? निशुल्क किंडर 3 और 4 साल के बच्चों को प्राथमिक स्कूल जाना शुरू करने से पहले 2 साल की उपयोगी शिक्षा उपलब्ध करवाता है और परिवारों के पैसों की बचत कराता है। किंडर में बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं, जिससे उनको महत्वपूर्ण सामाजिक, भावात्मक और बौद्धिक कौशल विकसित करने में और अपने दोस्त बनाने में मदद मिलती है। wic.gov.au/kinder पर और अधिक जानकारी प्राप्त।
8: चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना। ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनु चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां को लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप। टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सुमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 0390866655 और विजिट tirefors.com.au।

हाँ जी रेडियो हाँ जी 1674 एम दे उत्ते तुहाडा सारिआं दा स्वागत जी। अज 12 जून ते शुक्रवार दा दिन है ते आपां हुण रेडियो हाँ जी दे सिडनी स्टेशन तो लाइव शोज एक बार फिर तो लैके हो गए हाजर। लंबे ब्रेक तो बाद एक बहुत लंबे अंतराल के बाद ते प्रोग्राम अगले हफ्ते तो बकायदा शुरू करांगे। जिहड़े जिहड़े दिन दे जिहड़े जिहड़े प्रोग्राम हुंदे सी ते कुछ नवें भी, पर अज शुक्रवार के दिन थोनू दस दिए कि अज प्रधान इलाका कहड़ा नहीं होना क्योंकि हरसीन जी अज हाजिर नहीं है। सो मैं थोड़े नाल अज फिल्मों दी ही गल्लां करनियां ने। प्रोग्राम पर्दा बेपर्दा थोड़ा लंबा चलेगा, वो तो बाद एक इंटरव्यू भी हैगी है इम्तियाज अली होना दी, वो भी थोनू सुनावांगे प्रोग्राम के अखीर दे विच। पर फिलहाल कुछ नवे गाने लैके आवांगे पर्दा बेपर्दा इस ब्रेक तो बाद शुरू कर दें। जी खान का गाना सुन लो।

0: जी तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने, बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा, साडा तजरबा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
1: लाओ जी तुहाडी नजर है भोला।
0: ओए भोली ओए दी जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधू फिल्म्स ले आए ने हास्य मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म।
2: भोले ने कसूते फसाते।
0: ओए भोले ओए टू कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नू पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घरां विच देखना ना भुल्यो। ओए भोले ओए टू
3: भोला भाई।
0: चलदी दा नाम गड्डी आते सुनिया ही होना। तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनु चलाउन ले ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स जिना को लॉग बुक सर्विसिंग मैकेनिकल रिपेयर्स इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स यूनिट 1 19-25 सुमर्टन रोड कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au।
4: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
5: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साला तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
4: नंबर दा दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा।
5: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो बंसल immigration.com.au।
6: हाँ जी रेडियो।
0: क्या आप जानते हैं कि बच्चों की उम्र 5 साल की होने से पहले उनका दिमाग लगभग 90% विकसित हो जाता है? निशुल्क किंडर 3 और 4 साल के बच्चों को प्राथमिक स्कूल जाना शुरू करने से पहले 2 साल की उपयोगी शिक्षा उपलब्ध करवाता है और परिवारों के पैसों की बचत कराता है। किंडर में बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं, जिससे उनको महत्वपूर्ण सामाजिक, भावात्मक और बौद्धिक कौशल विकसित करने में और अपने दोस्त बनाने में मदद मिलती है। vic.gov.au/kinder पर और अधिक जानकारी प्राप्त।
4: की हाल है पिट दर्द दा?
7: जदों दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया, सब कुछ ठीक है। थैंक यू एदे बारे दसन लई।
8: और सुनो, हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेविटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोर

0: लोगों को शूट कर रहे हैं।
1: हमारे बिना शूटिंग कैसे कर रहे हैं?
2: ये तो अपना गाना।
1: या कम ऑन,
2: वाली शूटिंग हमारे वक्त।

ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555। शर्ता लागू।

रेडियो हांजी 1674 एम दे उत्ते तुहाडा सारयां दा स्वागत जी। अज 18 जून 2026 वीरवार दे दिन भारत आस्ट्रेलिया ते दुनिया जान दियां खबरां लैके आए हैं। शाम दे इस प्रोग्राम न्यूज़ रूम दे विच सब तो पहला इंटरनेशनल न्यूज़ दे नाल शुरुआत करदे हां। चंगी खबर, अमरीका ईरान जंग खत्म होने के उत्ते हुण अधिकारक मोहर लग गई है। आखिरकार अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ते ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने शांति समझौते के उत्ते हस्ताक्षर कर रहे हैं। फ्रांस के चल रहा जी 7 शिखर समिट उस पल का गवाह बनया जदों ट्रंप ने वरसाए महल के ईरान के समझौते के उत्ते हस्ताक्षर किए। ट्रंप ने उस समझौते के उत्ते डिनर के दरम्यान साइन किए जिसकी मेजबानी फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रोन के महल के अंदर की जा रही थी। यह पल अमरीका ते ईरान के दरम्यान टकराव खत्म करने की दिशा के महीनों तो चल रही गलबात के अखीर एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि बन के सामने आया। एक वीडियो सामने आई है जिस मैक्रोन ते होरना मेहमान डिनर टेबल के उत्ते बैठे नाल डोनाल्ड ट्रंप पीस अग्रीमेंट की हार्ड कापी के उत्ते हस्ताक्षर कर रहे हैं। ट्रंप के हस्ताक्षर करते ही उत्थे मौजूद मेहमाना ने ताली बजा के इसका स्वागत किया। कई दिन तक इस खबर को सीक्रेट रखने तो बाद बुधवार के दिन अमरीकी अधिकारियों ने मीडिया के नाल ईरान के नाल हुए इस MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बारे जानकारी दी। नाम ना दसन की शर्त के उत्ते उस ड्राफ्ट के बारे भी अधिकारियों को दसया गया जिस ईरान ने हाले तक कोई भी जानकारी जारी नहीं की है। दस दिए कि अधिकारियों के मुताबिक समझौते अमरीकी ड्राफ्ट के कुछ अहम गल्लां शामिल कीतियां गईयां जिवें ईरान के हाईली एनरिच्ड यूरेनियम नूं घट करन दे लई और हेठले पद्धर ते लैके आन दे लई ईरान नूं किया जाएगा 60 दिनां दे लई होर्मुज़ स्ट्रेट तों बिना किसी टैरिफ दे।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: टेंशन मेरी टेंशन
3: की होया
2: एथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
3: काका जी टेंशन छड्डो, फोन चको, कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नु जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
2: या 90-77-97-33
3: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
2: याद रखो 9077-9733।
3: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
2: हर कदम तुहाडे नाल।
4: बलजीत व्याह वास्ते ज्वेलरी देखन तुन्ना ज्वेलर्स चलिए।
5: यार उना दा डेंडी नॉग वाला स्टोर ना बड़ा ही दूर है।
4: ओ हुन टेंशन नहीं, हुन डेंडी नॉग तो इलावा अपने इलाके सेंट एल्बन्स विच तुन्ना ज्वेलर्स स्टोर खुल गया। ओही भरोसा ते 30 साल तो वध वरियां दा एक्सपीरियंस। रेडीमेड गोल्ड, डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी। तुन्ना ज्वेलर्स 99 मेन रोड वेस्ट सेंट एल्बन्स अते 341 Lonsdale Street, Dandenong. For more info, call 0499-2535-45 ते।
6: हाँ जी, ओए हाँ जी,
7: हाँ जी,
6: रेडियो

0: ओह मारे गए, दोबारा देर हो गई। गड्डी चलाउन विच्चों तनाव नूं बाहर कड्डो अते करो पहला ही तुर पाओ। जे तुसी गति सीमा तो तेज गड्डी चलाउंदे हो तां तुसी कानून नूं तोड़ रहे हो अते तुहानूं महंगा जुर्माना हो सकता है जां अपना लाइसेंस गुआ सकते हो। TSC वल्लों सुनेहा, हर किसे वास्ते सुरक्षित तरीके नाल गड्डी चलाओ।
1: की चाहिदा? ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लाउणा जां वीजे लई मशवरा चाहिदा? मिल जुगा, सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा लई एक भरोसे योगना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील करदे ने। हुणे ही कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नूं 0490054596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस .com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए। Ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road ते तुहानू उड़ीक रहा है। Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest ते सदाबहार Mustang, brand new demo ते quality pre-owned vehicles, trade-in अते finance options भी available। आओ ते अपनी नवी Ford दा test drive करो, business fleet लाई गल करो, vehicle experts, Tim Forbes या Corey नाल, radio हांजी दे हवाले नाल पाओ, 10 साल दी free service। Chadston Ford, ready, set, Ford.
2: लाओ जी तुहाडी नजर है बोला।
1: ओए पोले ओए दी जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधु फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म।
3: बोले ने कसूते बसाते।
1: ओए बोले ओए 2 कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नु पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घरां विच देखना ना भुल्यो। ओए बोले ओए 2
4: बोला भाई।
1: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
5: बलजीत व्याह वास्ते ज्वेलरी देखन तुन्ना ज्वेलर्स चलिए।
6: यार उना दा Dandenong वाला स्टोर ना बड़ा ही दूर है।
5: ओ हुन टेंशन नहीं, हुन Dandenong तो इलावा अपने इलाके सेंट एल्बन्स विच तुन्ना ज्वेलर्स स्टोर खुल गया। ओही भरोसा ते 30 साल तो वद वरियां दा एक्सपीरियंस। रेडीमेड गोल्ड, डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी। तुन्ना ज्वेलर्स 99 मेन रोड वेस्ट सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट Dandenong। फॉर मोर इन्फो कॉल 0499-2535-45 ते।
7: वाओ तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
8: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
7: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
9: कि तुसी अपने घर दे उपकरणां नूं बिजली नाल चलाउण बारे सोच रहे हो, ए तुहाडे सोचण नालों कितें आसान है। ईजी इलैक्ट्रिक SEC तुहानूं छोटां अते बचतां दा हिसाब लगाउण, उपकरणां दी तुलना करन अते भरोसेयोग ट्रेडीज़ नूं इक्को थां ते लब्भण च मदद करदा है। तुसी बिजली दे बिलां ते $2,000 तों वी वध दी सालाना बचत कर सकदे हो। कि तुसी शुरू करन लई तैयार हो? ईजी इलैक्ट्रिक SEC.com.au ते जाओ। बिजली बिलां ते बचत करना है बहुत आसान SEC दे नाल। विक्टोरिया सरकार मेलबर्न वालों
1: चाहिए। ओबिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लई बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओबिट होम्स अपने 44 वरियां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ओबिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते।
10: चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना। ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनु चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप। टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सुमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 0390866655 और विजिट
7: airforce.com.au.
4: ਪੈਂਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦਾ?
7: ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਲੀਪ ਐਂਡ ਰਿਲੈਕਸ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਰੂਮ ਵਾਲਾ ਗੱਦਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ।
5: ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਸਲੀਪ ਐਂਡ ਰਿਲੈਕਸ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈੱਡ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਲੀਪ ਐਂਡ ਰਿਲੈਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਲੈਵਟਨ ਨਾਰਥ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨਵਾਂ ਸਟੋਰ ਓਹਨਸ ਰੋਡ ਐਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਮਨਪਸੰਦ ਗੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਬੈੱਡ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸਲੀਪ ਐਂਡ ਰਿਲੈਕਸ। ਵੇਕ ਅਪ ਫੀਲਿੰਗ ਟੋਟਲੀ ਰੈਸਟਡ। ਸਰਚ ਅਸ ਆਨਲਾਈਨ ਔਰ ਕਾਲ 0433465492।
11: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 90% ਦਿਮਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੁਫਤ ਕਿੰਡਰ 3 ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਡਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ, ਭਾਵਾਤਮਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਹੁਨਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ vic.gov.au/kinder ਤੇ ਜਾਓ।

0: ब्रोकर्स अपनी इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस शर्ता लागू सोना चाहिदा
1: भरोसा चाहिदा
0: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे 22 कैरेट गोल्ड क्लासी सिल्वर डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत कैश चाहिदा गोल्ड लोन इजी एंड सेफ रिपेयर बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक कॉल 0493-536-042।
2: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ।

0: कमाल है, मैनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: अपने घर को इलेक्ट्रिक बनाने की सोच रहे हैं? ऐसा करना आपकी सोच से अधिक आसान हो सकता है। इजी इलेक्ट्रिक SEC आपको छूट और बचत का हिसाब लगाने, उपकरणों की तुलना करने और भरोसेमंद कारीगरों की खोज करने में सहायता देता है। ये सब कुछ एक ही स्थान पर। आप बिजली के बिलों पर प्रति वर्ष $2,000 से अधिक की बचत कर सकते हैं। शुरू करने के लिए तैयार हैं? easyelectricscc.com.au पर जाएं। बिजली के बिलों पर बचत करना SEC के साथ एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है। विक्टोरिया सरकार मेलबर्न द्वारा प्राधिकृत।
3: लाओ जी तुहाडी नजर है पोला।
4: ओए पोली ओए दी, जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधू फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म।
5: पोले ने कसूते फसाते।
4: ओए पोले ओए 2 कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नु पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घरां विच देखना ना भुल्यो। ओए पोले ओए 2।

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाई बैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाई बैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
2: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
4: आ किथे वज गई तेरी गड्डी?
3: गड्डी ता ठीक हो जू, पर इंश्योरेंस वालियां नू, लीगल वालियां नू इत्थे प्रदेश विच समझाऊंगा किवें?
4: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंह स्मैश रिपेयर वालियां ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंट दा लाइफ टाइम वारंटी नाल, वर्क एंड पेंट फ्री, लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते। सिंह स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाईबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
4: ਆ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜ ਗਈ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ?
3: ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ, ਪਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੀਗਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਕਿਵੇਂ?
4: ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਮੈਸ਼ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਇਰਸ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਟੀਮ, ਆਲ ਮੇਜਰ ਐਂਡ ਮਾਈਨਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਵਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਵਰਕ ਐਂਡ ਪੇਂਟ, ਫ੍ਰੀ ਲੋਨ ਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕੰਮ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 0383857748 ਤੇ। ਸਿੰਘ ਸਮੈਸ਼ ਰਿਪੇਅਰ, 8 ਗ੍ਰੇਸ ਵੇ, ਰੇਵਨ ਹਾਲ।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दालां, ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0403-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।

0: आपने जाना भी है इकोनॉमी छोड़कर, तो बिजनेस में जाओ और बिजनेस में भी खर्चा इकोनॉमी से कम या फिर बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो ये तो पता लगेगा जी, जो हमारे सामने हमारे गेस्ट बैठे हैं गगन जी, उनसे। गगन जी बिजनेस रन करते हैं, बिजनेस का नाम है टर्न लेफ्ट फॉर लेस, am I right?
1: हाँ जी।
0: हाँ, क्या बात है। ये टंग ट्विस्टिंग सा नाम और बड़ा ट्विस्टेड सा कंसेप्ट जो है, ये आज समझते हैं, गुत्थी खोलते हैं भाई, ये क्या सीन है। तो गगन जी, पहले तो वेलकम टू रेडियो हाँ जी 1674।
1: थैंक यू सो मच पाजी, थैंक यू फॉर हैविंग मी।
0: नहीं, वी आर हैप्पी कि वी आर हैविंग यू। लॉन्ग ड्यू था, पहले तो माजरत उसके लिए कि हम लोग कर नहीं पा रहे थे ट्यूनिंग, कि जब से पता लगा कि द थिंग्स दैट यू डू आर वेरी मच फेयर और दूसरे लेवल पर, इस लिहाज से भी आ गया कि ये चीज़ें हो भी सकती हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अगर हम थोड़ी सी ऑल्टरेशंस लेकर आ पाएँ। तो मुझे था कि हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, दे शुड नो इट, है ना। तो आई विल स्टार्ट विद कि क्या है भाई टर्न लेफ्ट फॉर लेस, पहले तो ये बताएं हमें।
1: कृष्णा, टर्न लेफ्ट फॉर लेस इज़ बेसिकली एक बिजनेस है जहाँ पर मैं दूसरों की हेल्प करना चाहता हूँ, एंड आई वॉन्ट टू प्रूव टू देम कि इट्स पॉसिबल टू फ्लाई इन बिजनेस क्लास बिना फुल प्राइस दिए।
0: ओके,
1: ठीक है। अब देखो, जो भी हो रहा है मिडल ईस्ट यूएस में, उसकी वजह से अब फ्यूल कॉस्ट ऊपर जा रही है, सबको पता है
0: जी।
1: उससे क्या होगा, जो अभी कैश प्राइसिंग है
0: जी,
1: वो ऊपर जाएंगी, लेकिन पॉइंट्स अभी ऊपर नहीं जा रहे, पॉइंट्स लास्ट ईयर ऊपर जा चुके हैं।
0: ओके,
1: ठीक है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ और ये आपको एक्सप्लेन करेगा कि टर्न लेफ्ट फॉर लेस है क्या
0: जी।
1: आपने अगर मेलबर्न से पेरिस जाना है, बहुत लोगों का शौक होता है यूरोप जाना
0: जी,
1: करेक्ट है
0: जी,
1: यूरोप जाना है स्पेशली समर्स में, जुलाई अगस्त सितंबर
0: जी।
1: बिजनेस क्लास की टिकटें हैं 12,000 से 15,000 की
0: जी,
1: और सबको पसंद है सिंगापुर एयरलाइंस, टॉप टियर एयरलाइन
0: जी।
1: इकोनॉमी की है 2,000-2,500 की
0: जी,
1: कितना फर्क हो गया,
0: काफी,
1: 8-9-10 गुना हो गया
0: जी।
1: अब सर ये सुनो कि पॉइंट्स में फर्क सिर्फ 2 गुना है। मेलबर्न टू पेरिस की टिकट जो है वो 80,000 पॉइंट्स की है। पॉइंट्स मतलब फ्रीक्वेंट फ्लायर पॉइंट्स
0: जी। हाँ, मैं यही चाहता था कि हम पॉइंट्स से पहले ये समझ लें कि पॉइंट्स क्या शय है, वो क्या चीज है ना।
1: फ्रीक्वेंट फ्लायर पॉइंट्स जिसका मतलब है कि जो एयरलाइंस हैं दुनिया में, जितनी भी एयरलाइंस हैं 200-300, उन सबके फ्रीक्वेंट फ्लायर पॉइंट्स होते हैं, मोस्टली होते हैं। अब जो कॉमन है, जो सबको पता होगा
0: जी,
1: क्वांटस, वर्जिन ऑस्ट्रेलिया। क्वांटस का प्रोग्राम जो है फ्रीक्वेंट फ्लायर का, वो क्वांटस ही है। वो थोड़े से लेजी हैं, उन्होंने ज्यादा क्रिएटिव नहीं रखा, वो अपने पॉइंट्स को क्वांटस ही बोलते हैं। जो वर्जिन ऑस्ट्रेलिया है वो अपने पॉइंट्स को बोलते हैं वेलोसिटी।
0: वेलोसिटी
1: तो आपके जितने लिसनर्स हैं, जितने बिजनेसेस हैं, मैं ऑलमोस्ट गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि एटलीस्ट 70-80% इफ नॉट 90% उनके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी पॉइंट्स होंगे।
0: अच्छा।
1: बहुतों के पास एमएक्स कार्ड होगा, बहुतों के पास वेलोसिटी कार्ड होगा, बहुतों के पास क्वांटस पॉइंट्स होंगे, पर उनको पता नहीं है कि उनको यूज कैसे करना है या पॉइंट्स को फास्ट अर्न कैसे करना है। तो वापस जाते हैं कि टर्न लेफ्ट फॉर लेस है क्या
0: जी।
1: तो मैं एवरीडे बिजनेसेस के लिए, जो इतना हार्डवर्क करते हैं, हम इतना टैक्स पे करते हैं, मैं कहीं पर पढ़ रहा था इंडियन कम्युनिटी जो है, इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेइंग कम्युनिटीज इन ऑस्ट्रेलिया।
0: सही बात है,
1: नॉट जस्ट विक्टोरिया या मेलबर्न। ठीक है, हम इतना हार्डवर्क करते हैं और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बिजनेस क्लास में जाना सबको है, बट नोबडी जस्टिफाइज स्पेंडिंग दैट मच। उतना खर्चा करना उनको वारा नहीं खाता, जैसे बोलते हैं ना कि ये होता है कि चलो शॉपिंग में डाल दो या बिजनेस में डाल दो या बढ़िया होटल कर लो या बच्चों को कुछ दिला दो। ठीक है, लेकिन जब आपके सामने एक तरीका है
0: जी,
1: अपने खुद के ही बिजनेस एक्सपेंस को यूज करना,
0: ओके,
1: और उसको यूज करके आप 50% फ्लाइट्स तो ऐसी ले सकते हो, 50% ऑफ द एक्चुअल रिटेल प्राइस। तो अगर एक टिकट 9,000 की है
0: जी,
1: जस्ट रीडायरेक्ट करना अपने अपने खर्चे को डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, सिर्फ उतना करने से आप वो 9,000 की जो टिकट है वो 4.5 में लेके आ सकते हो। आई गो अ लिटिल बिट फर्दर, मैं उससे भी आगे जाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं सिखाता हूँ कि अलग अलग स्ट्रेटजीज से आपने ऑर्गेनिक, जिसे कहते हैं ना फ्री पॉइंट्स, जिनकी कोई कॉस्ट नहीं है, अपने वो कैसे कमाने हैं ताकि जो ये 50% है वो चला जाए 90% तक। अगर आपकी इजाजत हो तो एक एग्जाम्पल दूं
0: जी। जी,
1: मेरा जो बेस्ट है अभी तक का एग्जाम्पल वो है मेलबर्न टू सिंगापुर विद सिंगापुर एयरलाइंस इन फर्स्ट क्लास फॉर $95। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं तो वहाँ पर ये एक वीडियो है, सिंगापुर एयरलाइंस फर्स्ट क्लास मेलबर्न टू सिंगापुर 2024 में मैं गया था, एंड आई यूज माई पॉइंट्स, और वो सारे जो पॉइंट्स मैंने अर्न किए थे, कमाए थे, उनकी कोई कॉस्ट नहीं थी, बिकॉज दैट्स जस्ट थ्रू नॉर्मल स्पेंड. और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा हूँ. देर आर वेज, तरीके हैं पॉइंट्स कमाने के बहुत फास्ट.
0: मेरा इस पर यही आ जाता बेसिकली सवाल ना, कि काफ़ी लोगों को पता होता है कि यार अगर क्वांटस पॉइंट्स हो मेरे पास तो है ना फ़ायदा है. ये कंपनियां अपने लेवल पे भी काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ को मार्केट भी करती हैं, राइट,
1: बहुत ज़्यादा कर रहे हैं.
0: पर ये आ जाता है कि जब आप ये, ज़्यादातर आदमी इस वजह से डरता है यार ये ना कहने की बात नहीं है, होता ना कन इदा नहीं फड़िया इदा फड़ लिया.
1: हाँ जी, हाँ जी.
0: कि बात वहीं पर आ जानी कि मेरा खर्चा थोड़ा थोड़ा करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उतना ही हो जाएगा जितने की शायद मैंने टिकट लेनी हो, है ना. तो कैसे इन, अगर एक हम केस स्टडी पकड़ लें,
1: हाँ जी,
0: अगर मैं एक ऐसी केस स्टडी ले लूं जिसमें मैं, क्योंकि मेजरली देखने वाले जो होंगे और सुनने वाले हैं, हम लोग हॉलीडेज के लिए तो काफी जगहों पर 2 साल में एक बार या 1 साल में एक बार जाते हैं, पर इंडिया बहुत चक्कर लगता है,
1: बहुत चक्कर लगता
0: है. और यूजली फैमिलीज की फैमिलीज जाती हैं, है ना. तो एक
1: मिनिमम 4 लोग,
0: है ना. तो एक तो इस पर यह बात है कि कैसे कहते हैं हम कि ऑर्गेनिक खर्चे से हम कर सकते हैं, एक केस स्टडी अगर उस पर हो जाए. और सेकेंडली हम क्योंकि बिजनेस के बारे में या फर्स्ट क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, दिस कैन वर्क ऑन इकोनॉमी आल्सो, राइट. समझो अगर 4 लोगों की फैमिली और अगर ऑन करना तो उस पर भी चल सकता है.
1: इकोनॉमी तो और भी इजी है.
0: हाँ, तो आप इस पर पहले, हम पहले ऑर्गेनिक कैसे होता है कि मेरा आम जो खर्चा है, ग्रोसरी का, पेट्रोल, इंश्योरेंसेस, घर की, गाड़ी की, ये सब जो पता है मेरे को ये खर्चे करने पड़ेंगे, है ना, और उसमें हम कैसे ऑल्टरेशंस लेकर आ सकते हैं, आप कैसे हेल्प कर सकते हो लोगों को कि वहां से हमें पॉइंट्स आना शुरू हो जाए.
1: तो मैं नॉट ओनली आपको एग्जांपल दूंगा, मैं आपके व्यूअर्स की हेल्प भी करूंगा
0: जी,
1: सो दे कैन एक्चुअली प्रैक्टिकली डू इट. 9 बजे सुबह वो लोग ये कर सकते हैं.
0: ओके,
1: ठीक है
0: जी,
1: इज दैट ओके?
0: जी जी जी, बिल्कुल.
1: सो पहला एग्जांपल है, हम लोग शॉप करते हैं एवरीडे रिवॉर्ड्स, मतलब वुलीज पे, वूलवर्थ्स पे
0: जी,
1: ठीक है. बहुत लोग जो है उनका फ्री रिवॉर्ड्स लेते हैं
0: जी,
1: उनका एक पेड रिवॉर्ड्स भी है.
0: ओके,
1: वो $7 मंथ का है.
0: Okay.
1: बहुत लोग लेते नहीं, वो कहते हैं $7 देके क्या फायदा, कुछ करना तो है नहीं.
0: बिल्कुल.
1: बहुत लोग ये नहीं देखते कि वो $7 नहीं है, वो एक्चुअली फ्री है.
0: ओके,
1: अब पूछो फ्री कैसे है?
0: कैसे?
1: क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जब आपने $70 की शॉपिंग करी, 10% आपको वापस मिल जाना.
0: अच्छा, तो
1: फ्री हो गया.
0: तो
1: काफी ज्यादा करते हैं जिनके बच्चे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं, लोग जाते हैं. और ये हम बहुत लो लेवल की बात कर रहे हैं, जब हम स्ट्रेटजीज की बात करते हैं तो दिस इज एट द लोअर लेवल. तो आपके व्यूअर्स ये ना समझे कि दिस इज द ओनली स्ट्रेटजी, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं आपको बता रहा हूँ
0: जी, जी.
1: ठीक है, तो दिस इज एट द बेसिक लेवल. तो एक कोई भी एवरेज फैमिली ऑस्ट्रेलिया में, अगर मैं उनको कोच करूँ या वो मेरे फॉलो करें इंस्टाग्राम या टिकटॉक या जो भी है, दे कैन अर्न बिटवीन 50 to 100,000 पॉइंट्स पर ईयर जस्ट फ्रॉम वूलवर्थ्स एंड कोल्स without spending more than they are already doing. Example, अब हम जिनके बच्चे हैं वो सारे मूवीज देखते हैं, किंग पिन बोलिन जाते हैं, JB Hi-Fi से इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं, सबके पास आजकल 13 साल की उम्र से आईफोन है, गैजेट्स हैं, एप्पल मैक है
0: जी.
1: तो अभी आप कोल्स पे जाओ या वुलीज पे जाओ, हर हफ्ते या हर दूसरे हफ्ते डील लगी होती है $20 per dollar ऑन एप्पल गिफ्ट कार्ड्स.
0: हाँ जी,
1: ठीक है, 20 points per dollar ऑन TCN हिम गिफ्ट कार्ड्स. अब जितने भी आपके व्यूअर्स सुन रहे हैं, गारंटी के हाथ बोल रहा हूँ, 70% से ज्यादा या तो Uber Eats से ऑर्डर करते होंगे
0: जी,
1: या Uber Ride लेते होंगे
0: जी. बिल्कुल,
1: कम से कम 70% बोल रहा हूँ
0: जी.
1: ठीक है, अब TCN हिम है, TCM हर है, कितने कार्ड आते हैं
0: जी,
1: उनको आप Uber में कन्वर्ट कर दो.
0: ओके,
1: 5 मिनट का काम है
0: जी.
1: आपको Uber वाउचर मिलेगा, अपने वॉलेट में डाल दो Uber के ऐप में. एक्सेप्ट instead of connecting it to your bank visa or master या Amex या कोई भी कार्ड से, आप
0: सीधे Uber से
1: जाओ, कार खरीदो, बोलिस तो आप जा ही रहे हो, कोल्स तो आप जा ही रहे हो, ये कार्ड खरीदो, टॉप अप करो, आपको 20 points. अगर आपका साल में 5,000 भी खर्च होता है खाने पीने पे Uber से या Uber Rides पे, बहुत होगा तो बहुत ज्यादा होता है, मैं एवरेज ले रहा हूँ
0: जी. बिल्कुल,
1: ठीक है, 5,000, what's 5,000 by 20?
0: 100,000. अच्छा, वाह.
1: अभी हमने कोई किसी और स्ट्रेटजी की बात नहीं करी है, ठीक है. और 100,000 एवरीडे रिवॉर्ड्स पॉइंट जो है वुलीज के, इक्वल्स टू 50,000 क्वांटस.
0: तो आपके व्यूअर्स शिफ्ट हो जाते हैं.
1: हाँ, वो आपको करने पड़ते हैं, लेकिन एक वंस ऑफ है, कनेक्ट कर दो, अपने आप पॉइंट जाएंगे. शॉपिंग करी, आपकी गाड़ी का दरवाजा खुलने से पहले पॉइंट आपके कॉन्ट्रेस के पॉइंट्स में पहुंचे होंगे. सो आपके व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए वुलीज इज कॉन्ट्रेस और कोल्स जो है वो फ्लाईबैक्स के माध्यम से जाता है वेलोसिटी में.
0: वेलोसिटी में
1: जी
0: ठीक है.
1: कुछ नहीं करना, शॉपिंग करनी है, स्कैन करना है और ठा करके पॉइंट्स आपके कॉन्ट्रेस में आ जाएंगे. सिमिलरली कोल्स में गए, फर्क इतना है कॉन्ट्रेस आ जाएंगे उसी सेकेंड. वेलोसिटी जो है वो कॉल्स के थ्रू 3 दिन लगाते हैं, उनका सिस्टम अलग है.
0: आने चाहिए बस बेसिकली
1: आ जाएंगे.
0: ठीक है,
1: यू डोंट हैव टू वेट फॉर वीक्स और इयर्स. और एक और स्टैटिस्टिक, एक एवरेज ऑसी, चाहे आप इंडियन हो, ग्रीक हो, जो भी हो, साल में एक एवरेज बंदा, चाहे वो बिजनेस हो चाहे 9 to 5 जॉब कर रहे हो, 100 to 200,000 पॉइंट्स कमाते हैं इफ दे नो व्हाट दे आर डूइंग और इफ दे थिंक दे नो. मतलब उनको अगर लगता है कि मुझे थोड़ा कुछ आता है. मैंने आपको 5 सेकंड में एक ऐसा तरीका बता दिया जो आप 50,000 पॉइंट एक एवरेज यूजर सिर्फ एक स्ट्रेटजी से कर सकता है. लेकिन ये तो सिर्फ एक है. आप कपड़े खरीदते हो, जैकेट, शूज खरीदते हो
0: जी,
1: अब कितने गिफ्ट कार्ड हैं जो हर महीने लगे होते हैं, हर हफ्ते लगे होते हैं
0: उसी पे.
1: लोग आईफोन खरीदते हैं
0: जी,
1: लोग नया टेक खरीदते हैं, ये कैमरा लगे हुए हैं खरीदते हैं
0: जी जी जी.
1: यू कैन अर्न 10 points per dollar, नॉट 1 point per dollar, 10 points per dollar. और अगर हम बड़ा खर्चा ना भी लें, एक नॉर्मल हाउस होल्ड की बात कर लें, बिजनेस तो आप छोड़ दो, 1 to 5 lakh पॉइंट कोई भी नॉर्मल हाउस होल्ड कमा सकता है इजीली.
0: जो पक्के यूजुअल खर्चे हैं वही करते हुए
1: उनमें, अभी हम बिजनेस तक पहुंचे भी नहीं है. अभी हम बिजनेस, हालांकि मेरा जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, दैट इज गेयर्ड मोर फॉर बिजनेसेस, क्योंकि साफ सी बात है उनका खर्चा ज्यादा है तो पॉइंट्स भी ज्यादा आएंगे और जल्दी आएंगे. बट मैं अभी बात कर रहा हूँ आपके सारे व्यूअर्स की
0: जी. ठीक,
1: टोटल व्यूअर्स जितने भी हैं, सिर्फ सिंपल चीजें करने से 1 to 5 lakh पॉइंट. अब आते हैं दूसरी बार जस्ट क्विकली, 3 lakh पॉइंट ले लेते हैं. 3 lakh पॉइंट का मतलब क्या है
0: जी?
1: कमा तो लिया आपने. 3 lakh पॉइंट का मतलब है कि आप अ फैमिली ऑफ टू, हस्बैंड वाइफ और टू फ्रेंड्स और अ कपल और अ पार्टनर कैन गो टू एशिया एंड कम बैक इन बिजनेस क्लास
0: 3 lakh पॉइंट पे.
1: हाँ जी,
0: मतलब सिर्फ टैक्सेस पे 1.5 lakh की टिकट हो गई आने जाने
1: एवरेज.
0: ओके,
1: 70,000 की भी हो सकती है, 80 की भी हो सकती है, मैं एवरेज बता रहा हूँ आपको. मतलब कि सिंगापुर, बैंकॉक, वियतनाम, बाली, हांगकॉन्ग, ठीक है, एशिया में मोस्ट प्लेसेस में आप 3 to 3.5 lakh पॉइंट में आ सकते हो. अगर आपने ऑर्गेनिकली अर्न किया है, सिर्फ टैक्सेस पे करने हैं. अब टैक्सेस सुनो कितने के होते हैं, 200 to 500 के बीच में
0: जी.
1: मान लो वर्स्ट केस सिनेरियो 500 लगा लो, दो बंदों के 1,000 हो गया रिटर्न. तो अगर रिटर्न 1,000 है, 1 to 2 कितना हो गया,
0: 2,000 हो गया.
1: मेरे को ये बताओ कौन सा ट्रैवल एजेंट 2,000 में 2 लोगों की टिकट बिजनेस क्लास में मेलबर्न टू एशिया करता है?
0: ओके, जब आई गेट योर पॉइंट, है ना. जब आप ये कहते हैं कि 50,000 तो हम इसी में से ही निकाल सकते हैं, सिर्फ वूलीज में से, अगर आपका 5-6 हज़ार का है ना, एक स्ट्रेटजी होगी, है ना. ऊबर कैश की तरफ से भी कर सकते हैं कि अगर आप ऊबर का कार्ड कर लें तो उसमें भी कोई ना कोई, है ना,
1: कॉल्स चल रही हैं सिर्फ ऊबर के.
0: ये सेट प्रेसिडेंट पक्के ही होते हैं कि ये चेंज होते रहते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम, की आज है कल वूलीज बंद कर दे, या फिर ये कुछ पक्के अदारे हैं, कोई पक्के बिजनेसेस हैं जो क्वांटस पॉइंट्स पता है कि मिलेंगे ही मिलेंगे?
1: काफ़ी टाइम से, 12 साल से तो मैं कर रहा हूँ और पिछले 4-5 साल से तो ये वूलीज कर ही रहे हैं, कॉल्स भी कर रहे हैं
0: जी.
1: बंद करने को तो सर कल कुछ भी बंद हो सकता है, राइट. कल किसने देखा, नो वन हैज़ अ क्रिस्टल बॉल
0: जी,
1: ठीक है ना. बट अभी कंसिस्टेंटली अगर हम ज़्यादा लंबा टाइम ना भी लें, 3 साल से तो मैं और मेरे 300 से ऊपर बिजनेस क्लाइंट्स कर रहे हैं.
0: ओके,
1: रेगुलरली किसी ना किसी का आता है टेक्स्ट या कॉल कि मेरे को अपने एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव देना है, कौन सा गिफ्ट कार्ड अभी चल रहा है, बिकॉज दे हैव नाउ रियलाइज, उनको पता लग गया है कि अब उनको सीधा कैश वूली जाके कैश नहीं देना, अब उनको अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है, ठीक है, और तब करना है जब ये ऑफर है. क्योंकि मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस जिनके पास एम्प्लॉयज हैं, या इवन आप एम्प्लॉयज को भूल जाओ, आप हमारे इंडियन कम्युनिटी में बर्थडे पार्टीज होती हैं
0: जी,
1: ठीक है, हम सबको कैश देते हैं, एनवेलप देते हैं, कुछ देते हैं. अगर आप क्रेडिट कार्ड दे, अगर आप गिफ्ट कार्ड दे सकते हो, काफ़ी यंगस्टर्स जो हैं उन वो 3-4 जो रिटेल आउटलेट्स हैं वो वहीं से लेते हैं. नाइकी हो गया, एडिडास हो गया, आपका H&M हो गया, ठीक है. अब ये सारे जो रिटेलर्स हैं इनके अलग से गिफ्ट कार्ड आते हैं, जैसे TCM ही हो गया, हिम में आप 50 रिटेलर्स के पास जाके वो सेम कार्ड यूज कर सकते हो.
0: और ये इजीली फिजिबली मिल जाते हैं, मैंने देखा हर सुपरमार्केट में, कोल्स में और वूलीज में,
1: हर हफ्ते कृष्णा हर हफ्ते किसी ना किसी गिफ्ट कार्ड पे डील लगी होती है. एवरी वीक इस साल, अभी आज क्या हो गया, जून हो गया
0: जी,
1: सिर्फ दो हफ्ते ऐसे आए हैं जहां पे 10% ऑफ था.
0: ओके.
1: उसके अलावा हर वीक 10 पॉइंट्स पर डॉलर ऑन गिफ्ट कार्ड्स. ये अगर आप सोचो कि 100-150 स्ट्रेटजीज हैं, ये एक बता रहा हूं मैं अभी.
0: फिर बात ये आ जाती है, कई लोग इस पे बड़ा भाग जाते हैं कि यार इतना इतना कौन सोचे, क्या करे, कोई थंब रूल हो, कोई मुझे पता हो कि एक होता ना टिप हो, एक ट्रिक हो कोई, कि मुझे पता कि इस तरह ट्रैक करना, एनीथिंग विच इज शेयरेबल ऑन योर पार्ट आल्सो, कि आप शेयर कर सको छोटा मोटा. मुझे पता कि ऑब्वियसली यू रन अ बिजनेस,
1: थोड़ा क्वेश्चन समझने की कोशिश कर रहा हूँ. तो अगर ट्रैकिंग की बात है, देखो हम वी इंडियंस, हम बहुत वेरी स्मार्ट पीपल, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा वी पे द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ टैक्स. सो इफ यू, जहां तक ट्रैकिंग की बात है, अगर मैं आपको क्वेश्चन समझाऊं, आप एक स्प्रेडशीट बना लो, सिंपल स्प्रेडशीट. आजकल तो एआई आ गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं. चैट जीपीटी, क्लॉड, लोग ड्राइव करते करते अपनी ईमेल्स टाइप कर रहे हैं. आप उतना मत करो, आप चैट जीपीटी को, और आपसे स्पीच टू टेक्स्ट आ गया, कुछ करना ही नहीं है. कुछ करना ही नहीं है, आप सिर्फ बोलो, रिकॉर्ड करेगा, स्प्रेडशीट बन के आ जाएगी, आप जस्ट रिकॉर्ड करो. दूसरी बात आती है कि कितना फीजिबल है. इसलिए मैं बिजनेसेस के साथ काम करता हूँ, बिकॉज इट्स ईजियर, क्योंकि उनको सिर्फ एक या दो मोटी मोटी स्ट्रेटजीज अपनानी है. ये सब छोटे मोटे काम करने की जरूरत नहीं है. ये तो मैं आई वॉज ट्राइंग टू हेल्प यू फॉर लाइक ऑल द व्यूअर्स, बट जो बिजनेसेस हैं, अगर वो सिर्फ अपना बिजनेस स्पेंड रीडायरेक्ट कर दें, और कुछ करने की जरूरत नहीं है. 50% तो ऐसे हो गया. बट एक साफ सी बात है कृष्णा, अगर आपको अप टू 90% ऑफ चाहिए, बिना एफर्ट के नहीं मिलने वाला.
0: हाँ, तो बात ठीक है,
1: ठीक है ना, कोई भी चीज बिना एफर्ट के नहीं मिलती. जितने भी लिसनर्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया जो आए हैं, बिना एफर्ट के नहीं आए. कोई स्टूडेंट बन के आया है, कोई पीआर लेके आया है, एक बंदा मुझे बता दो जो एक दिन के एफर्ट के पीछे सब कुछ करके आ गया हो. राइट
0: जी,
1: इट टेक्स एफर्ट. तो अगर आप चाहते हो कि आपको 90% बिजनेस क्लास सिंगापुर एयरलाइंस की लेस में मिले, और आप ये भी चाहते हो कि एफर्ट भी ना हो, कैसे पॉसिबल है
0: इसमें कोई? बिकॉज द मोर एग्जांपल्स आई गेट, द मोर इजियर फॉर मी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, और लोगों के लिए भी उतने मेरे ख्याल से इजी होगा. कोई एग्जांपल के तौर पे हम लोग अगर समझा सकें, आपका पर्सनल हो या आपके किसी क्लाइंट की टेस्टिमनी के हिसाब से अगर हो.
1: सो अभी एक रिसेंटली मैं ग्रुप कोचिंग करता हूँ
0: जी.
1: राइट, आई डू 1-on-1 कोचिंग एंड आई डू ग्रुप कोचिंग. तो ग्रुप कोचिंग में अभी एक ग्रुप खत्म हुआ है, उसमें एक एशियन लेडी है, शी इज़ ए डॉक्टर यहाँ मेलबर्न में, नॉर्थ कट में. उनका अभी छोटा बच्चा है, टॉडलर, तो उनको सिंगापुर जाना था नेक्स्ट ईयर फरवरी में, बट उन्होंने नहीं बनाया प्लान बिकॉज दे डिड नॉट वॉन्ट टू गो इन इकॉनमी. बिजनेस सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन जब उन्होंने कॉस्ट देखी 30 grand, उनका रहने देते, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा. देन दे हर्ड अबाउट मी, उन्होंने मेरी एड देखी फेसबुक पे, बात करी, मेरी मास्टर क्लास ज्वाइन करी, देन दे ज्वाइन माई प्रोग्राम
0: जी.
1: ठीक है, अभी जो स्ट्रेटजीज मैं आपको बता रहा हूँ
0: जी,
1: जस्ट ये स्ट्रेटजीज मैंने अभी शेयर करी हैं
0: जी,
1: सिर्फ ये करके लास्ट 2 months में उन्होंने इतने पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए कि उन्होंने अपनी बिजनेस क्लास की टिकट्स खुद के लिए, अपने हस्बैंड के लिए और बेबी के लिए 3600 में सिंगापुर एयरलाइंस के साथ बुक करी है टू सिंगापुर रिटर्न.
0: अच्छा वाह,
1: $3,600 AUD फॉर 2 adults एंड अ टॉडलर रिटर्न. आप बता दो कि इट इज अ गुड डील और नॉट?
0: इट इज अ गुड डील, काफी गुड डील वैसे तो.
1: हाँ, अब ये जो लेडी है ये थोड़ी सी एनालिटिकल है, तो इन्होंने स्प्रेडशीट बनाई और देखा कि कितने घंटे लगे इनको ये सब कुछ करने में. 5 hours. ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ, कोई भी व्यूअर से, अगर ये टिकट, वैसे ये टिकट्स 15,000 की थी
0: जी,
1: इफ यू डिवाइड 15,000 बाय 5 hours कितना आता है?
0: 3,000.
1: हाँ, अब आपके व्यूअर्स से क्वेश्चन है, विच वन ऑफ योर व्यूअर्स वुड लाइक टू अर्न $3,000 पर आवर? सिंपल मैथ है ना
0: जी. इसमें एक अगर हम ये भी टेंटेटिव प्राइस बता सकें कि उसी सेम फ्लाइट में इकोनॉमी का अगर हम आइडिया लगाएं तो इकोनॉमी का क्या प्राइस रहा होगा?
1: इकोनॉमी तो कृष्णा और भी इजी हो जाएगी और भी सस्ती होगी. इकोनॉमी तो आई थिंक अभी पीछे फैमिली ऑफ सिक्स है तो एक ही प्लेन में फोर से ज़्यादा सीट्स मिलना मुश्किल होता है बिजनेस क्लास, क्योंकि अवेलेबिलिटी डिपेंड करती है एयरलाइंस पे कि वो कितनी रिलीज कर रही हैं. बट उन्होंने कहा कि हम इकोनॉमी में भी जा सकते हैं, उनकी मर्जी थी, उनको बस पैसे बचाने थे. राइट, साफ सी बात है. तो दे वर वेरी ओपन अबाउट इट. अब उन्होंने इतने पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए हैं कि $1200 में फैमिली ऑफ सिक्स इज गोइंग टू इंडिया एंड कमिंग बैक.
0: वाओ,
1: फैमिली ऑफ सिक्स, क्योंकि बाकी उनके पॉइंट्स ऑर्गेनिक थे. ऑर्गेनिक मतलब गिफ्ट कार्ड्स, अभी मैंने इंश्योरेंस की बात नहीं करी है, होम इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस,
0: ये सभी चाहिए हर कोई रह लेता.
1: कार किसके पास नहीं होती आजकल? प्राइवेट टैक्स किसको नहीं बचाना? राइट, कार, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, आपके पास घर है, कंटेंट और होम इंश्योरेंस चाहिए. देर आर सो मेनी कंपनीज गिविंग यू अप टू 100. अभी कॉन्टेस्ट की डील चल रही है राइट नाउ एज वी स्पीक, 2 लाख पॉइंट दे रहे हैं वो.
0: अच्छा,
1: प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पे अप टू 200,000. वैसे एक बिजनेस को $2 लाख खर्चा करना पड़ता है टू अर्न 200,000 पॉइंट्स. अब कितनी फैमिलीज हैं जो महीने का 500, 600, 400 दे रही हैं बट कुछ मिल नहीं रहा. और अगर यही 600 दे के आपको 2 लाख पॉइंट मिल रहे हैं 6 महीने में,
0: ह्यूज डील.
1: इट्स ह्यूज, ह्यूज.
0: और इसमें ये ज़्यादातर बिजनेस स्पेसिफिक रहती हैं ये डील्स वगैरह, कि अगर कोई कहते हैं नौकरी पेशे वाला कोई हो उसके लिए
1: कर सकते हैं. बट यू नीड अ फायर इन द बेली, लाइक एक बहुत ही जुनून चाहिए आपको करने के लिए. क्योंकि पहले पहले सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन जैसे अभी आपने बोला कि एफर्ट लगेगा, कोई ईजी तरीका, तो वो फिर शॉर्टकट्स ढूंढने में लग जाते हैं. राइट, बट अगर कोई भी बंदा या फैमिली 8 से 15 आवर्स अगर आप लगा सकते हो, मैं ओवर अ 6 मंथ पीरियड बोल रहा हूँ, इफ यू कैन डेडिकेट, क्योंकि कुछ टास्क में 5 मिनट लगेंगे, कुछ में 10 मिनट, कुछ में 15 मिनट लगेंगे. ठीक है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स टू अर्न पॉइंट्स कैन बी डन वाइल सिटिंग एट होम ऑनलाइन
0: एंड नो एक्स्ट्रा खर्चा.
1: ये
0: मेन है.
1: आई नो,
0: बाकी बात
1: आई नो ये मेन है, बट ये मेन नहीं होना चाहिए. बिकॉज मैं फिर से बोलूंगा, अगर आपको बिजनेस में ट्रेवल करना है और आप ये बोलो कि मेरी इकोनॉमी की टिकट 2000 की आती है, 1800 में नहीं हो सकता.
0: हाँ ठीक है. राइट, मतलब कहीं ना कहीं से अल्टीमेटली यू विल गेट अ रिटर्न.
1: हाँ हाँ, लेकिन मेरे जो मोस्ट ऑफ माई क्लाइंट्स हैं वो ये बोलते हैं कि यार अगर हमें 2.5 की जगह 3 भी देने पड़े लेकिन 10 ना देने पड़े.
0: हाँ वो तो, हाँ मतलब एवरीबडी लाइक्स अ गुड
1: डील, एवरीबडी वुड लाइक टू डू इट. राइट, इवन विदाउट डूइंग अ सर्वे, 90% ऑफ योर क्लाइंट जो आपके लिसनर्स हैं अगर वो ये बात सुने तो 90% वुड पुट द हैंड अप एंड से ये मुझे 10 नहीं खर्च करने, लेकिन अगर 2 की जगह 2200 या 2500 या 3 खर्चने पड़े और बिजनेस क्लास मिल रही है, विच मीन्स लाउंज 40 किलो, हमें क्या चाहिए होता है? लोग वेट एडजस्ट कर रहे होते हैं एयरपोर्ट पे. और एक और चीज़ है, जेट लैग. एटलीस्ट 5 families इन द लास्ट 6 days हैव टोल्ड मी कि हॉलीडे से आए, बेटी बीमार हो गई, स्कूल नहीं गई, गैस घर पे कौन बैठा है? पेरेंट्स.
0: बिल्कुल सही.
1: और अगर बैठे हैं तो ख्याल किसको रखना है? पेरेंट्स को.
0: बिल्कुल.
1: तो वो प्रोडक्टिविटी कहाँ गई? पेरेंट्स की प्रोडक्टिविटी कम होगी ना.
0: बिल्कुल सही बात है.
1: और जब वो बिजनेस में जाते हैं तो कोई जेट लैग नहीं होता.
0: ये वेट का तो बहुत इशू रहता है,
1: ठीक है ना.
0: पर्सनली बहुत रोता हूँ इस चीज को लेकर. तो आपकी बात तो सही है.
1: तो और प्रीमियम इकोनॉमी तो इतना आसान है कृष्णा, अगर आप बिजनेस को छोड़ भी दो, प्रीमियम इकोनॉमी में ट्रैवल करना इज सो इजी फॉर अ फैमिली ऑफ 6, नॉट इवन 4.
0: अगर मैं इसे, सॉरी आपको टोका, अगर मैं इसे डाइसेक्ट कर दूं
1: जी,
0: मैं अगर पर पर्सन पर चलूं
1: जी,
0: तो अगर ऑन एन एवरेज में 80,000 पॉइंट कह लूं कि 80,000 पॉइंट में मेरे को 1 way की बिजनेस की टिकट मिल सकती है फॉर अ,
1: आप 1 लाख चलो मोटा मोटा,
0: चलो 1 लाख पॉइंट में ठीक ठाक बढ़िया एयरलाइन, सिंगापुर एयरलाइंस टाइप पे, है ना. तो प्रीमियम इकोनॉमी और इकोनॉमी सेम उसी फ्लाइट की कितने पॉइंट्स में मिल जाती है?
1: So, पर हेड हम सिंगापुर एयरलाइंस की बात करें तो उनके जो फ्रीक्वेंट फ्लायर का नाम है वो है क्रिस फ्लायर
0: जी,
1: ठीक है. आपको 100,000 में अगर आप टाइम से करा लोगे तो 100,000 क्रिस्प फ्लायर में मेलबर्न डेली मिल जाएगी
0: जी।
1: इकोनॉमी होगी आपकी, प्रीमियम इकोनॉमी होगी अराउंड 75 की।
0: ओके
1: एग्जैक्ट तो मेरे को अभी नंबर नहीं पता, बिजनेस का मुझे पता बिकॉज आई डू इट एवरी डे। प्रीमियम इकोनॉमी होगी 70-80 के बीच में, 68 भी हो सकती है, अराउंड 70 लगा लेते हैं
0: जी।
1: और इकोनॉमी तो सिर्फ 50 में मिलती है। और एक और चीज आपके व्यूअर्स के लिए एक टॉप हैक बता रहा हूँ, अगर आपके पास सिंगापुर एयरलाइंस के पॉइंट्स नहीं भी हैं लेकिन आपके पास वेलोसिटी के पॉइंट्स हैं वर्जन ऑस्ट्रेलिया के, तो भी आप सिंगापुर एयरलाइंस की प्रीमियम इकोनॉमी बुक कर सकते हो।
0: ओके
1: एंड फॉर लेस पॉइंट्स देन सिंगापुर एयरलाइंस ओन प्रोग्राम।
0: ओके
1: मतलब जो उनका खुद का प्रोग्राम है
0: अच्छा,
1: उससे सस्ते में, उससे कम पॉइंट्स में आप वेलोसिटी के पॉइंट यूज करके सिंगापुर उन्हीं का प्रोडक्ट में आप फ्लाई कर रहे हो।
0: ओके अब इसमें एक और आ जाता है सवाल कि अब अगर मैं देखूं लोगों का जो इंटरेस्ट है, रुझान है, वो इस तरफ काफ़ी जाना शुरू हो गया पॉइंट्स वगैरह
1: जी
0: इकट्ठे करने पे, तो ये कंपनीज, क्योंकि आप कह रहे हो आप यू बीन डूइंग दिस फॉर 12-13 ईयर्स है ना, तो ये कंपनीज इंसेंटिवाइज अब ज़्यादा कर रही हैं पहले से कि कम कर रही हैं?
1: 100% ज़्यादा कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया कि कॉन्टेस्ट 2,00,000 पॉइंट दे रही है,
0: तो बढ़ रहा है, मतलब
1: बढ़ रहा है।
0: okay.
1: अभी AMP बैंक है। एक और चीज हमारे इंडियन व्यूअर्स के लिए, हमारे हम सेविंग्स में पैसा डालते हैं राइट, 4.25% इंटरेस्ट जो भी है
0: जी,
1: उससे क्योंकि उस पर टैक्स लगता है
0: जी।
1: आप अभी AMP बैंक की डील चल रही है, आपको वो 1 point per $10 दे रहे हैं टू हैव इट इन योर बैंक अकाउंट।
0: Okay.
1: बहुत लोग ऑफसेट में रखते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत आपके व्यूअर्स होंगे जिनका 10-50-1,00,000 बैंक में ऐसे ही पड़ा हुआ है। उसको अगर आप AMP बैंक में डाल दो तो आपको महीने के 10-50,000 पॉइंट तो सिर्फ उस खड़े पैसे के मिल रहे हैं। मतलब इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग। आप एक बार सोच कर देखो, व्हाई विल अ बैंक डू दैट? ठीक है,
0: मैं इसमें ना बस ये आपने जितना बताया, थैंक यू वेरी मच, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको ऐसा क्या हो गया था लाइफ में
1: जी,
0: ऐसा क्या हो गया, ऐसे क्या घटना हो गई जो आपने इस तरफ रुख कर लिया
1: जी?
0: बिकॉज हैविंग सेड दैट, ये मैं आपने क्या बताना है, मैं ही बता दूं कि क्वांटस हो गए या वेलोसिटी वगैरह हो गया, या फिर इन्होंने अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी का नाम लिया, किसी बैंक कंपनी का नाम लिया, तो वी नो दिस फॉर अ फैक्ट कि यू आर नॉट कमीशन्ड बाय देम।
1: नो,
0: आप उनके एजेंट नहीं है।
1: नहीं, मेरा कोई एफिलिएशन नहीं है,
0: एफिलिएशन किसी के साथ ऐसा नहीं है, सच नहीं है। ये आपने देखा खुद से किया और आपको लगा कि ये और लोग भी सीख सकते हैं, राइट? तो ये आपने जब देखा तो कब देखा और फिर कैसे ठीक किया?
1: ओके सर, 2 अगस्त 2013 को मुझे आज तक याद है, मैं लंदन गया था अपने भाई से मिलने के लिए
0: जी।
1: वो 2 साल के लिए लंदन गया था।
0: ओके
1: तो उसने बुलाया मुझे, तो उस टाइम पे एक कार्ड हुआ करता था वेस्टपैक का, क्रिस फ्लायर कार्ड, जो अब नहीं है।
0: ओके
1: ठीक है, वो लेगेसी कार्ड है, वो बंद कर दिया
0: जी।
1: उस टाइम मेरे पास 90,000 पॉइंट थे।
0: ओके
1: अब एज यू डू, आजकल सोशल मीडिया पे आप बैठते हो, ये एक चीज दूसरी पे चली जाती है, दूसरी तीसरी पे चली जाती है
0: जी।
1: तो मैं बैठा बुक करने के लिए टिकट, तो मैंने अपना क्रेडिट कार्ड खोला, देखा ये 90,000 पॉइंट है। इससे पहले कि मुझे समझ में आता, मैं सिंगापुर एयरलाइंस की वेबसाइट के थ्रू मेलबर्न टू लंदन सिंगापुर एयरलाइंस बिजनेस क्लास $100 में बुक कर चुका था।
0: ओके
1: जब मैंने उसका बाद में प्राइस देखा तो वो 6,500 की थी उस टाइम पे।
0: अच्छा, उसने खुद से अपने आप को वहां पर ट्रांसफर किया? ओके,
1: क्योंकि मैंने अपने लॉगिन किया अपने क्रेडिट कार्ड के पोर्टल में देखने के लिए कि भाई कितना बैलेंस है, क्या है, तो वहाँ पॉइंट्स लिखा आ रहा था 90,000। तो मैंने देखा कि क्रिस फ्लायर है, तो क्रिस फ्लायर तो सिंगापुर एयरलाइंस का प्रोग्राम है। देखा ट्रांसफर किया तो ट्रांसफर साथ के साथ हो गए। हो गए तो वहाँ पे चीज लेके आ रही थी अवार्ड्स रिडीम। बटन दबाया, बैठे हो, बटन दबाते हो, बटन दबाए तो डाला और टिकट आ गई अवेलेबल। 90,000 पॉइंट चाहिए थे, 90,000 थे
0: जी।
1: अब शुरू कैसे हुआ कि मैं चला तो गया बिजनेस क्लास में बड़ा खुश होके $100 में, लेकिन वापस आया इकोनॉमी में,
0: पॉइंट खत्म हो गए
1: पॉइंट ही नहीं। अब आप खुद सोचो, आप इतनी चौड़ी, आपने देखी है सीट सिंगापुर एयरलाइंस की?
0: जी जी जी,
1: ठीक है
0: जी,
1: इतनी चौड़ी होती है
0: जी,
1: राइट? और इकोनॉमी कितनी होती है?
0: हाँ,
1: आपको ऐसे खाना पड़ता है।
0: मेरा तो ज्यादा ही बुरा हाल होता है, मैं तो घुटने,
1: आप अपने ये, हाँ
0: यस,
1: आपके मोड़े टकरा रहे हैं साथ वाले के साथ
0: जी,
1: ठीक है,
0: बिल्कुल।
1: तो जब मैं वापस आया तो मैं लिटरली टीयर्स में था, जैसे कहते हैं ना मैन टीयर्स, लिटरली टीयर्स में था। तो मैंने फिर सोच लिया कि बस अब मैंने कुछ करना है, इसको पढ़ना है। तो वो अगस्त 2013 से लेके अगस्त 2014 तक मेरी उस टाइम पे बहुत स्टेबल जॉब थी, तो मैंने अपनी इवनिंग्स और वीकेंड्स इसको डेडिकेट किए.
0: ओके.
1: और फिर अगस्त 2014 से लेकर आज तक मैंने फुल प्राइस नहीं पे किया. बट बिजनेस मैंने 2021 में शुरू किया, एक फ्रेंड की हेल्प करी. तो उसने मुझे बोला कि यार तूने मेरे $20,000 बचा दिए 10 मिनट के अंदर. उसके पास 1 million पॉइंट्स थे, लेकिन उसको पता नहीं था करना क्या. तो उसने कहा तू इस चीज़ दूसरों को सिखाता क्यों नहीं है. एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड एंड हेल्पिंग अदर बिजनेस ओनर्स.
0: क्या बात है भाई, रॉकस्टार में था, टूटे दिल से ही म्यूजिक निकलता. आपके ट्रॉमा से काफ़ी लोग सीख पाए हैं और सीख रहे हैं. थैंक यू गगन जी शॉर्ट एंड क्रिस्प चैट करने के लिए हमारे साथ. जाने से पहले एक क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट कह लें अपनी तरफ से, या क्लोजिंग थॉट अपनी तरफ से, और अपने सोशल्स और अपने वेबसाइट के बारे में बता दें हमारे व्यूवर्स को, ताकि दे कैन कॉन्टैक्ट यू.
1: जी, पहली बात तो ये है कि देखो, पैसा बचाना किसको नहीं अच्छा लगता
0: जी,
1: और अच्छा लाइफस्टाइल किसको नहीं चाहिए
0: जी.
1: ठीक है, मोस्ट ऑफ योर व्यूअर्स वुड बी बिटवीन 30 and 60 years of age, so they have lived their first half of their life. और लोगों को होता है कि यार मैं अपना सेकेंड हाफ तो कम से कम थोड़ा सा कम्फर्ट में बिताऊँ. तो जब हम इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, इतनी आउटगोइंग्स जा रही हैं, अगर एक तरीका है उसको मैक्सिमाइज करने का बिना पैसे खर्च किए. अभी ऑर्गेनिक पॉइंट्स की बात हो रही है, हमने बिजनेस की बात तो करी ही नहीं ज़्यादा. ठीक है, अगर एक तरीका है तो मैक्सिमाइज इट, तो आप क्यों ना करो, स्पेशली अगर आपकी फैमिली को या तो उसमें कंफर्ट मिल रहा है या पैसे बच रहे हैं. ठीक है, नाउ इन रिगार्ड्स टू गेटिंग इन टच विद मी, जो भी आपके बिजनेस व्यूअर्स हैं जो खुद का बिजनेस रन करते हैं, दे कैन गो ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे टिकटॉक हो, या फिर इंस्टाग्राम हो, एंड यूट्यूब. ऑल दे हैव टू डू इज टाइप इन टर्न लेफ्ट फॉर लेस, क्योंकि हम जब एयरक्राफ्ट के अंदर जाते हैं तो हम राइट टर्न होते हैं टू इकोनॉमी. वेयर डू वी टर्न लेफ्ट इनटू बिजनेस एंड फर्स्ट. तो मेरे बिजनेस का नाम उसी से आया, टर्न लेफ्ट फॉर लेस. तो अगर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो डाल देंगे तो हर पोस्ट में मेरा या तो लिंक होगा या वेबसाइट होगी. और अगर आपके बिजनेस लिसनर्स मेरी मास्टर क्लास अटेंड करना चाहते हैं जो हर महीने होती हैं, इस महीने वो 24th जून को है, देन द वेबसाइट एड्रेस इज
0: LP.
1: ठीक है, L फॉर लीमा, P फॉर पापा, LP जैसे लैंडिंग पेज होता है ना, lp.turnleftforless.com.
0: जी,
1: और लास्ट थिंग, अगर किसी को डायरेक्ट ईमेल करनी है तो वो info@turnleftforless.com पे हमें ईमेल कर सकते हैं. कोई भी उनका क्वेश्चन हो आपके, अगर वो रेडियो हांजी करके लिखेंगे, आई एम हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चन.
0: इसलिए तो बुलाया कि जी रेडियो हांजी के हवाले से आप इनसे बात करें, फ्री कंसल्टेशन ले एक बार, और फिर बाद में जैसा आपका मन माने, वन ऑन वन करनी है जी, मास्टर क्लास ज्वाइन करनी है तो आप कर सकते हैं. ये था जी आज का सेगमेंट आपके लिए, हम लेकर आए थे स्पेशली जानने के लिए कि भाई ये क्वांटस फ्लायर की दुनिया, ये वेलोसिटी पॉइंट्स की दुनिया, ये सब भी एक चलता हुआ एक पैरेलल सिस्टम है टू बुक योर फ्लाइट्स और पैसे बचाने के लिए. पैसे खर्चा आजकल काफ़ी बढ़ भी गया है. ये एपिसोड कैसा लगा, और ये भी हमारे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर करें कि जब आप गगन जी से बात करें तो आपको कैसा लगा, और आपकी लाइफ में कोई ख़ास तब्दीली आई या नहीं आई, कुछ सीख पाए या नहीं सीख पाए. ये था हमारा प्यारा सा स्पेशल सेगमेंट. मैं हूं कृष्णा, टेक केयर, बाय बाय, देखते रहें सुनते रहें रेडियो हांजी 1674 AM.

0: होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लिए बनाउंदे ने उनां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद इन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते।
1: Porque se quente, escondí el lobo bajo. Oye, que por, como pendejo, guapo. Oye, era,

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की होया
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
1: काका जी टेंशन छड़ो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल।

ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस की हर लोड़ ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। शर्ता लागू।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक माल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: की चाहिदा? ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लाउणा जां वीजे लई मशवरा चाहिदा? मिल जुगा। सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दियां वीजा लोड़ा लई एक भरोसेयोग ना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील करदे ने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नूं 0490054596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।

अकाल मूर्त अजूनी सैपं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सोचै सोच न होवी जे सोची लहवार, चुपै चुप न होवी जे लाय रहा लिवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार, सह सियान पाला खोए ता एक न चले नाल। किव सच्यारा होई है किव कूड़ै तुटे पाल, हुकुम रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहा जाई, हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वड्याई। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है, एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पुआई है। हुक्मै

पाए जाए। ए अंत न जाने को बहुता कही है बहुता होए, वड्डा साहेब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ। ए वड़ ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे को जाने सोए, जे वड़ आप जाने आप आप। नानक नदरी करमी दात, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तुमाए, केते मंग

केते मूर्ख खाई खाए केतिया दुख भूख सदमार। ए बेदात तेरी दातार बंद खलासी पाने होए, और आख न सके कोए जे को खाए आखन पाए। ओ जाने

प्रेत अप्रेत देवे सुतर में नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साहंग नमो पू पूपे नमो दान दाने नमो मान मानंग नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्ट नमो तंत्र तंत्रंग सदा सच्चिदानंद सर्व प्रणासी अनूपे अरूपे समस्तल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बिर्द करदा अधो उर्द अर्दंग अग उग हरता परं परं परमेश्वरं प्रोचपालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयारं अछेति अपेदी अनाम अकामं समस्तो पराजी समस्तस्त तामं तेरा जोर चातुरी छंद जलय है थलय है अभीत है अभय है प्रभु है अजू है अदेश है अवेश है प्रियंग पुरा छंद गादे अबादे आनंदी स्वरूपे नमो सब माने समस्ती निदाने नमस्त्वं निनाथे नमस्त्वं परमाथे नमस्त्वं अगंजे नमस्त्वं अभंजे नमस्त्वं अकाले नमस्त्वं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साहसाय नमो माय माय नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो सर्व तानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व दिसंग नमो सर्व कृत्संग नमो सर्व रंगे त्रभंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखजे अभजे समस्तंग प्रसजे कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग पनासी सदा सर्वदारिद सिद्धंग निवासी चार परिचांद तो प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अलख जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग अलख कर्मंग सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुहाल छंद तो प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्व मंत्र मान देव अभेद आदोदार सर्वपालक सर्वकालक सर्वकोपनकाल जत तत्र विराज ही अवधूत रूप रसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आदसे देश अरना पेश जाकर रूप रेख नराग जात्र तात्र दिशा विशा हुए फैलो नराग नाम काम बहिन पे खुद ताम हो न जाए सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मानताए एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जानी जय बेधरक देव रूप रंग न जात पारसो जानी कह देव तात मात न जात जाकर जन्म मर्म हीन चक्र बकर फिरे चतर चक मान ही पुरतीन लोक चौदह के बिखे जग जाप ही जय जाप आद देव अनाद मूर्त थाप्य सब जय थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रस्त्यो सुजंभव गण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म ताम सो परम रहत अभूत अलख अभेद अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुकुदाय काम आव रूप अमीक अनुस्तुत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंगहीन अभांग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपाल सर्वगंता सर्वहंता सर्व ते अनपे सर्व शास्त्र जानी जय रूप रंग रेख परम वेद पुराण जाके नेत पागत नेत कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आवि उचित मदभार छंद तो प्रसाद गुण गानुदार मैं माया पार आसान अभंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्दिन अनास

कालान कान अनुभूत अंग अभाव अंगत में तपार गुण गण उदार मुन गण बरनाम निर्भय निरकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलछ्य कंस आदि श्री तरम सर्वां वर्णांडिये अंडंड भांडिये चाचरी चंतो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निर्नामे अकामे यंग प्रिया छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र जानिए चाचरी छंद न सत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्रे न मित्रे पर है पवित्र प्रतिशय अधीरशय अधीरशय अकृशय भगवती छंतो प्रसाद कथते के आछे जदेश के आभेज भेषय के आगाज कर्म के आभंज भरम के आभेज लोक के आदित शोक के अवधूत वर्ण के बेपूत करण के राजम प्रवाह के धर्मक तुजा है के आशोक वर्ण के सर्वा अवर्ण के जगतंग कृति हैं के छत्रंग छत्री हैं के ब्रह्मंग स्वरूपे के अनुपव अनुपे के आद अदेव हैं के आप अभेव हैं के चक्रंग बहीन है के एक अधीन है के रोजी रजा कह रही में रहा कह के पाक बेअब है के गैबिल गैब है के अफल गुना है के साहल सुना है के कारण कुनंद है के रोजी दहंद है के राज ग्रहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मानिए के सर्वत्र दानिए के सर्वत्र गौणे के सर्वत्र पौणे के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र भाओ के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राजय के सर्वत्र शोक है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देश के सर्वत्र पेश के सर्वत्र मानिय सदैव प्रदानीय के सर्वत्र जापिया के सर्वत्र थापिया के सर्वत्र पान के सर्वत्र मान के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वंग कलीम के परमंग फहीम के अकाल अलाम के साहेब कलाम के हुसन वजू है तमामल रजू है हमेशा सलाम सली खुदामे गनी बुल शिकस्ते गरीब उल परस्ते मुलंदर मुकाने जमीन उल जुमाने तमीजुल तमामे रजूअल निदाने हरीफुल अजीमे रजाय यकीने अनेकल तरंग है अभेद है अभंग है अजीजुल निवाज है गनी मुल खिराज है निरकस स्वरूप है त्रिमुक्त भूत है प्रभगत प्रवाह है सो जुग सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तल सलाम है सदैवल कलाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आदरूप है अनाद स्वरूप अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गन त्रिवादे अगजे अगाधे सुभंग स्वरूपागे सो सर्वान रागे त्रिपुगत स्वरूप है अक्षज है छूत है कि नरकम परनाश है पृथ्वी परवास है निरकत परवाह है सदैव सदा है बेपुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है निरकत सदा है बेपुगत परवाह है अनुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है चाचरी छंद अभंग है अनंग है अभेक है अलेख है अभर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अधूत है अनास है उदास है अधंध है अभंध है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अभेक है अडा है अगा है असंभ है अभंग है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजात है चारपड़ चंतो प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग कर्मंग सर्वंग धर्मंग सर्वंग जुक्ता सर्वंग मुक्ता रुआल चंद तो प्रसाद नमो नरगनासे सदैव प्रगासे अनंग स्वरूपे अभंग भूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निर्साग शरीक है अमित ओमिक है सदैव परवा है अजय है अजा है भागवती छंद तो प्रसाद के जाहिर जहूर है के
ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਮੇਸ਼ਰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿਰਾਗ ਹੈ, ਕਿ ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਰੋਜੀ ਦਹੰਦ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਹੰਦ ਹੈ, ਕਰੀਮੁਲ ਕੁਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਸਨ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਗਨੀਮੁਲ ਖਰਾਜ ਹੈ, ਗਰੀਬੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ, ਹਰੀਫੁਲ ਸ਼ਕਨ ਹੈ, ਹਿਰਾਸਲ ਫਕਨ ਹੈ, ਕਲੰਕਨ ਪਰਨਾਸ ਹੈ, ਸੁਮਸਤਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਅਗੰਜਲ ਗਨੀਮ ਹੈ, ਰਜਾਇਕ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਸੁਮਸਤਲ ਜੁਬਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਰਾਹ ਹੈ, ਕਿ ਨਰਕਮ ਪਰਨਾਸ ਹੈ, ਬਿਸਤਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬਰ ਗਵਨ ਹੈ, ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਵਨ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਅਦੀਸ ਹੈ, ਪਰੰਗ ਪਰੰਗ ਈਸ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਅਦੀਸ ਹੈ, ਅਦੇਸਲ ਅਲੇਖ ਹੈ, ਅਭੇਸਲ ਅਭੇਖ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜੁਮਾ ਹੈ, ਅਮੀ ਕੁਲੁਮਾ ਹੈ, ਕਰੀਮਲ ਕੁਮਾਲ ਹੈ, ਗਜੁਰ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਅਚਲੰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਕ੍ਰਮਿਤ

गुणगन मुदाम हर बर अगंज हर नर प्रभंज अनगन प्रणाम मुन मन सुनाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनभव अनास मुन मन प्रगास गुणगन प्रणाम जलथन मुदाम अनछिज अंग आसान अभंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिसविस अभंड जल थल महंत दिसविस बेअंत अनपौ अनास त्रित तर तुरास आजान वा एक सदा ओंकार आदि कथनी।

अंठन अबार आडीठ धर्म अत ढीठ करम अन बरन अनंत दाता मंत हर बोल मना शांतो प्रसाद करनाले अर काले है कल खंडल है मैं मंडल है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व वारण है धृत के तरण है जग के करण है मनमानी है जग जानी है सर्वंकार है सर्वंकार है सर्वपाशी है सर्वनाशी है करुणाकर है विश्वम्भर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करुणाकर है अजपाजप है अतपात्व है अकृताकृता है अमृतामृता है अमृतामृता है करुणाकृत है अकृताकृता है तरणीकृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नर नायक है कलघायक है विश्वम्भर है करुणालय है निर्म नायक है सर्वपायक है पाव पंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जब जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ताकर है हरताहर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है प्रजांग प्रया छंद नमो सूर सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बिंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम संक्षात रूपे नमो परंग ततंग अतंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो त्यान त्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पोज पोजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंगूते कलंकार रूपे अकलंकार अलंके नमो आसे आसे नमो बांग बंके अभंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी कामे एक अश्री छंद अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनास अकाश अगंज भंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अभेख अनाम अकाम अगा अडा अनाथे परमाथे अजूनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अभर्मंग अगजे अलेखे प्रियांग प्रजा छंद नमस्तुल प्रणामे सुमस्तर प्रणासे अगंजन अनामे सुमस्तल निवासे निर्कामंग बभूते सुमस्तं स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुतर्मंग प्रभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करीमल कुरंदा सुमस्तल निवासी अजाय बभूते गजायब गनी में हरियंग करियंग करीम रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुयंबं सुमं सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते। तो प्रसाद सोइए सराव समूह सिद्धान के देख फिरियो कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधायक सन समूह अवनिगति के सारी देश को देख रहे हो मत को न देखत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कोर तुरंग कुरंग से कुद पौन के गौन कुजात निवारे पारी पजान कपूर बलि बन्याव सीत न जात बिचारे इते पै तो कांपे पुपुत अंत को नांगे पाए बिदारे जीत बिरे सब दे दिशान को बार जित टोल मृदंग निगारे गुजत गुण गजान के सुंदर हंस दह हजराज हजारे ओत पवेख पवान के पुपुत कौन गुने नी जात बिचारे श्री पत श्री भगवान पजे बिन अंत को अंत के ताम सिधारे तीर्थ नाम दया दम दान सुसंयम नेम अनेक बसिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन समान समान को पिख है पौन हार जति जत हर सब विचार हजार को देख श्री भगवान पजे बिन पूपत एक रति बिन एक न लिख सुध सुबा दुरन दुबा सुसा सनह दुर्ज

पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जो थियो, जमन काल सब लोग सुवारा, नमस्कार है ताए हमारा, जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जचन उपजायो, आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार किसी को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी, शिवकन को शिवगुण सुख दियो, सतन को पलमो बद कियो, काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, टीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतम दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, काट काट के पट पट की जाने, जब उदकर करा कर तारा, प्रजा तरत तब दे अपारा, जब आकर्ष करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ, देते बदन सृष्ट सब थारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही तेरे निरालम, जानत बेद भेद अल आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड उचारत पेदा, जा को पेव न पावत बेदा, ताको कर पाहन अनमानत, महामूड किछ भेद न जानत, महादेव को कह सदा शिव, निरंकार कर चिंत नहीं पेव, आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत पिन पिन तोय तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, कहब सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग प्यो राव कई पूपा, अंडज जे राज से तजकीनी, उत्पुज खान बहु रज दीनी, कहो फूर राजा है बैठा, कहो सिमट पयो शंकर कैठा, सगरी सृष्ट दिखाए चंभव, आज जुगा स्वरूप सुजंभव, आवरछा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रन काता, जे आज तो तब सरनी परे, तिन के दुष्ट दुख है मरे, पुरख जवन पाग परे तिहारे, तिन के तुम संकट सब तारे, जो कल को एक बार तिहाय है, ताके काल निकट नहीं आए है, रच्छा होए ता सब काला, दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे न हर हो।

तही गुणी संसार परम सुत्ता सुत्या रहन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वस्या बोले अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनु अंत दिन हर

0: करते हो
1: परम सम्मान जो जुगो जुग अटल चवर छत्र तख्त दे मालक गुरता गद्दी ते सुभाए मां समुची मानुखता नु सांझा उपदेश बख्शिश करन वाले दीन दयाल भगत वशल करुणा में सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह जी दी पावन पवित्र कजोरी विच महान पवित्र स्थान दीवान खाल गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे सतगुरु पातशाह जी दे हजूर जुड़ के सतसंगत दियां सुभागियां घड़ियां दा आनंद आप जिया ने गुरु के कीर्तनिया पासों आसा की वार दी पावन पवित्र बाणी दा कीर्तन सुन के माणे है। आओ सतसंगत जी सोडी सुल्तान पातशाह धन गुरु रामदास साहिब जी दे महान पवित्र दर तों जो अमृत वेले श्री मुख वाक दी बख्शिश समुची मानुखता दे लई उपदेश रूप प्राप्त कोई उस महान बख्शिश दी विचार लई आपां पावन स्थान ते रोज एकत्र होने आं। गुरु कृपा सदका उन्हां अमृतमई बचना नूं सतगुरु दे उपदेश राही गुरु दी मत राही समझण अते विचारण दा जतन करना है। निसंसे आप जी समूह संगतां वड भागे हो जिन्हां नूं महान पवित्र स्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे पावन अमृत सरोवर च इशनान करन दा ते पावन स्थान दे दर्शन दीदार करन दा सुभाग प्राप्त होया है। कदे भाई साहिब भाई जैता जी ने धन गुरु तेग बहादुर साहिब पातशाह जी दा जदो सीस बड़े अदब सहित दिल्ली दी धरती तो श्री आनंदपुर साहिब लिआंदा कलगीधर पातशाह जी ने पुछिआ सी भाई जैतियां नूं की चाहीदा है। वेखो पातशाह जी ने इत्थों तक वी किहा रंग रेटे गुरु के बेटे आप दा पुत बनाया फिर भी सतगुरु पुछदे ने दसो की चाहीदा है। आपां किन्ने वड्डे भागां वाले हां भाई साहिब भाई जैता जी ने एक बचन आख्या सी धन गुरु कलगीधर पातशाह जी रहमत करो श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान दी दात बख्शिश करो। आप जी निरसंसे वडभागे हो जिन्हां नूं सतगुरु ने त्रुट के दात बख्शिश कीती आओ जतन करिए। सिख दे कोले आ जी क्योंकि राह है जिथों आपां बच सकदे हां। कदे भाई केदारे ने धन गुरु अंगद देव पातशाह जी नूं पुछिआ सतगुरु चारे पासे संसार विच ईरखा है द्वैष है लोकी एक दूजे तो सड़दे ने नफरत करदे ने की करिए किथों भी बचण दा राह नहीं लभदा। सतगुरु तुसी किसे राह पाओ धन गुरु अंगद देव पातशाह एक बचन आख्या कहिंदे भाई केदारा जदों जंगल विच अग लगे ना अग तो बचण लई जिन्ने भी जानवर ने ना ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੈ ਅੱਗ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਜੇ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਦੁਵੈਸ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਐ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ। ਆਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤ ਸੰਗਤੀ ਸੰਗ ਹਰ ਧਨ ਖੱਟੀ ਹੈ ਹੋਰ ਥੈ ਹੋਰਤ ਉਪਾਏ ਹਰ ਧਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਪਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡ ਭਾਗੇ ਹੋ ਉਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰ ਜੁੜੇ ਹੋ ਆਓ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਸਾਰੇ ਅਦਬ ਸਹਿਤ

शब्द है साधना आयो साधदार्थ तुसी समझ दे कोई भी चीज आपां लईए ना खान नूं जे उहदे विचों रस आउणा शुरू होवे आपां कहिंदे जी थोड़ी जी होर पाओ थोड़ी जी होर पाओ। स्वाद बारे तुसी इत्थे बारे ते सुनिया है बड़ी वीडियोज वायरल हुंदियां ने जी इत्थे दी ए चीज स्वाद इत्थे जी ए चीज स्वाद उहदा मतलब पता कि किसी चीज नूं बार बार खाण दा मन करना यह हुंदा है स्वाद। दाता जी कहिंदे तैनूं शब्द विचों रस नहीं आ रहा। मैं एक निक्की जी उदाहरण दवां किसी दे घरे ना लंगर रखिया मैं ते परिवार छकण लई गया असी बह गए ते परिवार पुछ लैंदा भाई साहब लून मिर्च मैं कि ठीक ठीक पा लियो। जदों छकण बैठे ना जी अरदास बेनती करके मैं परिवार नूं वी क्या नाले ही बह जाओ कट्ठे छकण लगे मैनू माता जी कहंदे भाई साहब लून मिर्च ठीक है मैं कहा जी बिलकुल ठीक है नाल ही पोतरा बैठा कहंदे की बिलकुल फिक्का बनाया किसी काम का नहीं है। मैं भी वेख के सुन के हैरान होया मैं कहा बच्चा ए क्यों बोलदा मैं कहा पुत बिलकुल ठीक है। वो कहंदे नहीं भाई साहब फिक्का उहदी दादी कहंदी है कहंदे भाई साहब जी इहनू फिक्का ही लगना। मैं कहा क्यों कहिंदे कई दिन हो गए बीमार है हले तक इहदी बीमारी निकली नहीं इहदे अंदर बुखार है तुसी वेख्या होना जदों बहुता बीमार हुई है ते मुंह दा स्वाद विगड़ जांदा है। एक गल ध्यान विच रखना जे गुरबाणी दा रस नहीं आउंदा पिया गुरबाणी दे नाल प्रेम नहीं है हले अंदर बीमार है गुरु कोले आके बीमारी दा इलाज कराइए संगत करिए गुरु बचना नूं कमाउणा शुरू कर दिए तुहाडी बीमारी कट्टी जावेगी फिर साध संगत सुखमनी साहब पढ़न लग्या पासे नहीं जे मारने पैने। फिर नितनेम बारे ए नहीं कहांगे जी भाई साहब कला जपजी साहब कई करके सर जूगा नहीं फिर ते साध संगत पता की हुंदे उधर तत्ती तवी होवे ते उधर चौंकड़ा वज्या होवे उत्थे बह के भी कहा जांदा तेरा किया मिठा लगे हमारी प्यारी अमृत धारी गुर निमख ना मनते तारी रे। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਧਨਾ ਆਇਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਆਰੰਭ ਤੇ ਕਰੀਏ ਨਾ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਅੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭੋਗ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇਗੀ ਵਰਤਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਰੱਖੀਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮਰ ਜਨਮੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਤੇਰਾ ਜਨਮ

नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आपका पुण्य दर्शन में। मैं हूं आपका दास। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, ये भजन तो आपने सुना होगा। हम ये अक्सर गा और सुन तो लेते हैं, किंतु मन में विचार यही है कि जो भी काम किया है मैंने किया है। ये केवल कहने या सुनने का विषय नहीं है, विश्वास आपका कितना भगवान पर है ये जानना अति आवश्यक है। क्या हम और आप कुछ कर सकते हैं, या जो भी हम करते हैं हमसे करवाया जा रहा है? जानते हैं छोटे से अंतराल के बाद। आप सुनते रहिए पुण्य दर्शन।

पुण्य दर्शन सुन रहे हैं आप अपने दास के साथ। एक राजा रोज अपने राज्य के मंदिर में जाया करता था। मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों को दान देना राजा की आदत थी। हर रोज भिखारियों की पंक्ति में अंत के दो भिखारी नंदू और चंदू उसे मिलते तो नंदू राजा को देखकर भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता और कहता, हे भगवान, तुमने इस राजा को कितना दिया है, मुझे भी थोड़ा दे दीजिए ना। वहीं दूसरी ओर चंदू राजा से कहता, हे राजन, आपको भगवान ने कितना दिया है, उसमें से मुझे भी थोड़ा दे दीजिए ना। राजा रोजाना की तरह सभी को दान देकर महल की ओर निकल जाता है। रास्ते में राजा अपने मंत्री से बोलता है, वो नंदू भिखारी हमेशा भगवान से मांगता है, किंतु चंदू जो मुझसे मांगता है, ऐसा कीजिए, एक बड़े बर्तन में खीर बनाइए और उसमें सोने के सिक्के डाल दीजिए और जिसने मुझसे मांगा है उसे वो खीर दे दीजिए। जिसने मुझसे मांगा है मैंने तो उसे दे दिया, देखते हैं नंदू को भगवान क्या देते हैं। क्या आप भी जानना चाहते हैं? अभी बताता हूं, थोड़ी देर में। मैं यूं गया यूं आया।

पुण्य दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। तो राजा से जिसने मांगा उसके लिए खीर में सोने के सिक्के डालकर भिखारी को देने पहुंचा मंत्री। राजा के यहां से इतने बड़े बर्तन में शाही खीर देखकर चंदू भिखारी फूला नहीं समाया और राजा को भर भर के आशीर्वाद देने लगा। मंत्री खीर देकर चला गया और उधर दूसरा भिखारी भी ये सब देख रहा था, किंतु चंदू गपा गप खीर अकेला ही खाने लगा। जब उसका पूरी तरह पेट भर गया फिर भी उससे रहा नहीं गया, वो खीर खाता गया। किंतु अंत में जब उसकी बस हो गई तो उसने बची हुई खीर नंदू को देते हुए कहा, मूर्ख, भगवान तुम्हें क्या देगा, ये ले खा राजा की खीर। और उसने वो खीर का बर्तन और थोड़ी बची हुई खीर नंदू को दे दी। अगली सुबह राजा मंदिर आया तो चंदू ने राजा के गुणगान गाए और उसके चरणों में पड़ गया, किंतु राजा को दूसरा भिखारी वहां ना देखकर रहा नहीं गया और पूछा, तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है और तुम्हारे लिए खीर भिजवाई थी मैंने। वो बोला, राजा जी, मैंने वो खीर पेट भर कर खाई, पेट में जगह नहीं थी फिर भी जी भर के खाई, और जो बच गई थी उस दूसरे भिखारी नंदू को दे दी। मूर्ख, हमेशा कहता था भगवान देंगे, मैंने कहा राजा की खीर खा, राजा ने भिजवाई है मेरे लिए, तो उसको मैंने वो बर्तन खीर के साथ दे दिया। तब राजा जोर से हंसा और बोला, सच में उसे भगवान ने जो देना था वो उसे दे दिया। मित्रों, अगर मांगना है ना तो उस परम पिता परमेश्वर से मांगो, क्योंकि जब भी भगवान देता है छप्पर फाड़ के देता है। हम इंसानों में ना तो उतनी शक्ति है कि हम किसी को कुछ दे सकते हैं और ना ही इतना बल कि किसी की किस्मत का छीन सकते हैं। तो केवल भगवान की शरण ग्रहण कर सच्ची भक्ति ही हमें दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बना सकता है, और वो धन हमसे कोई छीन भी नहीं सकता। वो धन है कृष्ण प्रेम धन। इस पर कीजिए विचार और मुझे दीजिए आज्ञा, फिर लेकर आऊंगा आपके लिए पुण्य दर्शन। मैं हूं आपका दास, नमस्कार।

ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस की हर लोड़ ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। शर्ता लागू। किचन का स्टाइल डल लगता, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया जी जे स्टोन मेसन, पार्टे करनो बनाए एकदम क्लासी। असी बनाने हां डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 Collins Road, Melton।

किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया जी जे स्टोन मेसन, पार्टी करनु बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 Collins Road, Melton।

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। इना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: बहुत लंबे समय तो औरतां दी सेहत नूं गंभीरता नाल नहीं लिया गया है, हुण बेहतर करन दा समां है। बेहतर सहायता, वधेरे स्पष्ट जानकारी अते वधेरे आसानी नाल उपलब्ध देखभाल। एंडोमेट्रियोसिस विच सहायता, IUD लगवाउण समय मुफ्त दर्द राहत अते मेनोपॉज दौरान सहायता। असी बेहतर हो रहे हां ता जो तुसी भी बेहतर हो सको। womenshealth.vic.gov.au ते जाके होर जानो। विक्टोरियन सरकार मेलबर्न द्वारा जारी।
3: एक अजेही दुनिया जिथे जिराफ हुण सब तो उच्चे जानवर नहीं है। जूज विक्टोरिया मान नाल चिड़ियाघर विच डायनासोर्स नूं पेश करदा है अपने सारे मनपसंद जानवरां दे विच। 3 चिड़ियाघरां विच 60 तो वध असली आकार ते डायनासोर्स दे नाल एक पुरातन इतिहासिक मुहिम लई तैयार होवो। मेलबर्न चिड़ियाघर, वेरीबी ओपन रेंज चिड़ियाघर अते हिल्सविल सेंचुरी दे विलक्खण बाहरी वातावरण विच एनिमेट्रॉनिक जीवां नूं जिउंदे जागदे वेखो। चिड़ियाघर विखे डायनासोर्स सिर्फ सीमित समय लई हन। अज ही अपनी मुहिम दी योजना बनाओ।
4: जे तुसीं बीमार हो तां AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au। सोना चाहिदा,
5: भरोसा चाहिदा,
4: क्वालिटी ते बाईबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स, स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स, 310/2 मेन स्ट्रीट, पॉइंट कुक। कॉल 0493-536-042।

0: Brokers. अपनी इंश्योरेंस की हर लोड ले, याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।
1: बलजीत व्याह वास्ते ज्वेलरी देखन तुन्ना ज्वेलर्स चलिए।
2: यार उना दा डेंडी नॉग वाला स्टोर ना बड़ा ही दूर है।
1: ओ हुन टेंशन नहीं, हुन डेंडी नॉग तो इलावा अपने इलाके सेंट एल्बन्स विच तुन्ना ज्वेलर्स स्टोर खुल गया। ओही परोसा ते 30 साल तो वध वरियां दा एक्सपीरियंस। रेडीमेड गोल्ड डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी। तुन्ना ज्वेलर्स 99 मेन रोड वेस्ट सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट डेंडी नॉग। फॉर मोर इन्फो कॉल 0499-2535।
3: अपने घर को इलेक्ट्रिक बनाने की सोच रहे हैं? ऐसा करना आपकी सोच से अधिक आसान हो सकता है। इजी इलेक्ट्रिक SEC आपको छूट और बचत का हिसाब लगाने, उपकरणों की तुलना करने और भरोसेमंद कारीगरों की खोज करने में सहायता देता है। ये सब कुछ एक ही स्थान पर। आप बिजली के बिलों पर प्रति वर्ष $2,000 से अधिक की बचत कर सकते हैं। शुरू करने के लिए तैयार हैं? easyelectricscc.com.au पर जाएं। बिजली के बिलों पर बचत करना SEC के साथ एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है। विक्टोरिया सरकार मेलबर्न द्वारा प्राधिकृत।
4: टेंशन मेरी टेंशन इमिग्रेशन पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
5: काका जी टेंशन छोड़ो, फोन चको, कॉल करो VY इमिग्रेशन नू, जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, इम्प्लॉयर स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स, या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT, अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
4: या 90-77-93
5: या ईमेल info@vyimmigration.com.au।
4: याद रखो 9077-9733।
5: VY इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
4: हर कदम तुहाडे नाल।
6: सोना चाहिदा,
7: भरोसा चाहिदा,
6: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन Easy and safe. Repair, bullion buying, selling, sab ek hi jagah. Te o bhi wajib rate te. Delhi Jewelers, 310/2 Main Street, Point Cook. Call 0493-536-042.
8: Aa kithe vajgi teri gaddi?
9: Gaddi ta theek ho ju, par insurance walyan nu, legal walyan nu itthe pradesh vich samjhaunga kive?
8: Tere vaang kinne hi apne bhain bhraavan di tension mintan ch dur kiti hai. Sink Smash Repair walyan ne inna de kol apni maa boli ch kam karn wale lawyers di free of cost team, all major and minor accidental lifetime warranty naal. Work and paint, free loan car di service mildi hai. All private and insurance authorized kaam te. Free legal advice like call karo 0383857748 te. Sink Smash Repair, 8 Grace Way, Raven Hall.
10: Je tusi bimar ho ta AI kol nahi, doctor kol janne ho. Fir kanuni masle vich faisla khud kyun? Yaad rakho, delay in law is damage in life. Family issue, property da masla, koi immigration di samasya ya koi bhi kanuni matter, ikko naam jo kam tuhade layi karde ne, Bansal Lawyers. Tuhada bharosa, sada tajruba te jit apni. Call 422-905-860 or visit bansallawyers.com.au.
11: क्या आप जानते हैं कि बच्चों की उम्र 5 साल की होने से पहले उनका दिमाग लगभग 90% विकसित हो जाता है? निशुल्क किंडर 3 और 4 साल के बच्चों को प्राथमिक स्कूल जाना शुरू करने से पहले 2 साल की उपयोगी शिक्षा उपलब्ध करवाता है और परिवारों के पैसों की बचत कराता है। किंडर में बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं, जिससे उनको महत्वपूर्ण सामाजिक, भावात्मक और बौद्धिक कौशल विकसित करने में और अपने दोस्त बनाने में मदद मिलती है। vic.gov.au/kinder पर और अधिक जानकारी प्राप्त करें।

0: set go Chadston Ford Dandenong Road te tuhanu udik reya hai Ford Ranger Ranger Super Duty Everest te Sadabahar Mustang brand new demo te quality pre-owned vehicles trade in ate finance options we available aao te apni navi Ford da test drive karo business fleet lai gal karo vehicle experts Tim Forbes ya Cory Nal radio hanji de hawale nal pao 3 saal di free service Chadston Ford ready set Ford.
1: रोज रोज शॉपिंग हुंदियां ने पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्होंने
2: सूरज देवता
1: की मतलब
2: ओ कमलिए सन करंट वालियां तो ज्यादा इन्हां ने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई
1: मैनू नहीं पता आपा भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे
2: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल कॉल सन करंट 0448-066-494 ते सालां तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम सन करंट देओ रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी

0: जी तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
1: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दालां, ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
2: क्या आप जानते हैं कि बच्चों की उम्र 5 साल के होने से पहले उनका दिमाग लगभग 90% विकसित हो जाता है? निशुल्क किंडर 3 और 4 साल के बच्चों को प्राथमिक स्कूल जाना शुरू करने से पहले 2 साल की उपयोगी शिक्षा उपलब्ध करवाता है और परिवारों के पैसों की बचत कराता है। किंडर में बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं, जिससे उनको महत्वपूर्ण सामाजिक, भावात्मक और बौद्धिक कौशल विकसित करने में और अपने दोस्त बनाने में मदद मिलती है। vic.gov.au/kinder पर और अधिक जानकारी प्राप्त।
3: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमिग्रेशन वालिया दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
5: पेंजी की हाल है पिट दर्द दा?
6: जदों दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया, सब कुछ ठीक है। थैंक यू इदे बारे दसन लई।
7: और सुनो, हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेवेटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदन लई कांटेक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स। वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 0433-465-492।
8: की चाहिदा? ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लाउणा जां वीजे लई मशवरा चाहिदा? मिल जुगा, सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दियां वीजा लोड़ा लई एक भरोसे योगना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील करदे ने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नूं 0490-054-596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस .com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।
9: चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना। ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनू चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सुमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 0390866655 और विजिट tireforce.com.au।